ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवेता। सतगुर रहे आप हर पूरे, मंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद पूरे।

दर्शन पर से आगू कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत ख समदी नूर अरसों कुरसों चटिया।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

किरत धक्के दे जहां दाने तहां खाने नानका सच है। एक ता दाने जिथे जिथे खिलरे ने असी उत्थे जाना है दाने चुनने ने, ते दूजी मौत सानू खिच के लई फिर दिए जिथे साडा अंतला समा होना है अखीरला पड़ा सांदा उत्थे होना है। एक दाना ही रिजक ते दूजी मौत। ते सतगुरु कहिंदे आ इह तां भाई मैं तुसी लिखा के आए संबत साहा लिखिया साल भी लिखिया है महीना भी लिखिया है। कल दे अर्थ करां एक बार बहुत समा पहले कीते सन उदाहरण व्याह दी दित्ती है संबत साहा लिखिया साल लिखिया है साए चिट्ठी आ गई है जिवें बीबी दे केसां विच तेल पांदियां ने बीबियां माइये पांदियां ने कहिंदे ने भाई सिखो मौत दा समा लिखिया है संगत जी आओ मेरे केसां च असीसां दा तेल पाओ मैनू असीस दिओ मेरी मालक नाल बाण आवे ते जिहड़ा सनेहे भेजदा है ओनू उलामे नहीं दई दे ओहदे तों कुरबान जाईदा है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होवै साहिब स्यो मेल घर घर एहो पहुंचा पहुंचा मतलब पोचा जिन्हों आप साहे चिट्ठी कहिंदे हो। मैं एक बार कहा सी शब्द इत्थे पहुंचा नहीं हैगा टिप्पी लगी पहुंचा ये बार दी बोली है पोचा आना साहे चिट्ठी आनी। महाराज कहिंदे घर घर एहो पहुंचा जिन्ने शरीर ने सारिया घरां च चिट्ठी ते उदन आ गई जिदन मां की कुख चो बाहर आए मौत की चिट्ठी लैके आया घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया। सदन वाले नूं ना सिमरना चाहिए सिर्फ एक बचन कह के आप थोड़ा जा नाम जपांगे जिन्ना समा मैंने दिता बस पांच चार मिनट रह गया जी। जो संत महाराज जी ने आखिरी कीर्तन किया ना जी वाजा आप बंद किया जो असी पढ़े जी हाँ जी आप बंद किया आप तो पहला बंद करते नहीं सन नाल अनाउंसमेंट होंगी सी कल नूं आराम करांगे अमृत संचार होगा अगला दीवान होगा उदन अपने हथी वाजा बंद कर दिता आखिरी कीर्तन है पर सुरां लाइयां जिहड़ियां कदी करमसर दी धरती दे जवानी वेले लाइयां सन। अंदर चले गए बाबा महिंदर सिंह जी उन्हीं सेवा च गए उन्होंने एक गल की महाराज जी अज कैसे बोल किते कैसे बचन किते। चलो मैं अपने शब्दों च कह रहा जो लिखा बिल्कुल वो नहीं भाव वो है अज केड़े बचन किते आखिरी कीर्तन क्या अगला प्रोग्राम नहीं दसिया पैराग सन संत महाराज जी के बोल सुन वाले ने कह लगे भाई जथेदारा कि बंदे का सुभाग है लैन लग्या अखा होर होंदिया ने वापस करने वेले अखा होर होंदिया ने पर आपां ऐसा नहीं करना जिस अकाल पुरख ने जिवें दिता है उस तरह ओदे उन्हूं वापस करना है असी अखा नहीं बदलनिया। मेरे कहण तो मुराद कि बंदगी करन वाला वह कहिंदा भाई जदे सदे हरे आ ते कुरबान जाओ सदा अफसोस नहीं किया घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया सदन वाले का सिमरन करो नानक से दें अवन वो दिन साढ़े ते भी आता पे है। साध संगत जी आप संगत का बाबा बलजिंदर सिंह जी पूरे जेडे ट्रस्टी वीर आ तुम जिन्हें भी अंगम हो सब का धन्यवाद जी आओ।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया है। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया है। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलता, किसे नूं मुकदमा पै गया है, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ
1: ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹੀ ਮਿਟਾਵੋ
0: ਸਿਮਰਮ ਜਾਸ ਵਿਸ਼ਮ ਪਰ ਏਕੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤਿਆ ਗਣਤੇ ਅਨੇਕੈ
0: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਰ
1: ਇਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਰ
0: ਇਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ
1: ਕਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਨੀ ਨ ਆਵੈ
0: ਕਾਂਕੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ
1: ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ
1: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਫਲ ਫਲਾ
0: ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ
1: ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਲਾਗੋ ਪਾਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪ੍ਰਾਸਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ
1: ਅਮਰਤ ਨਾਮਰਤ ਮਹੇ ਸਮਾਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ
1: ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ
0: ਸਿਮਰਨ ਤੇਲਾ ਕੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ
1: ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਮੰਗੈਰ ਵਾਲਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦਵਰਹਾਰੀ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਹਾਵੇ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅੰਧ ਕਨੇਰੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ
0: ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਤਿਨ ਜਾਗ
1: ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਵ ਗੁਣ ਝੂਰੇ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰਚਲ ਆਸਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ
1: ਸੁਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ
0: ਸਿਮਰਹਿ ਸਹਿਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਿਆ
1: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਿਆ
0: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ
1: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ
0: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ
1: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਕੁੰਡ ਜਾਤੇ
0: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ
0: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ
1: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ
0: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ
1: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ
0: ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ
1: ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ
1: ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ
0: ਜੈ ਮਹਾ ਧਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ
1: ਜੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ
0: ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ
1: ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ
0: ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ
1: ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ
0: ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ
1: ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ
0: ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ
0: ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ
0: ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿੱਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤੇ
0: ਜੇ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ
1: ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਐਸਾ ਨਾਮਵਾਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ
1: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈਐ
0: ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ
0: ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜਹ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਹਉ ਮਹਿਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ
0: ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧਕ ਸੰਗ
0: ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨ ਜਾਏ ਨਾ ਪੋਸਾ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ
0: ਜੇ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਂ ਅੰਤ ਗੁਬਾਰਾ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ
0: ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਝਾਨੂ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ
0: ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ
1: ਜਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ
0: ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆ ਕਰਖੈ
1: ਜਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ
0: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ
1: ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ
0: ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ
0: ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
1: ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ
1: ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬ੍ਰਿਤ ਭਵਿਕੈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ
1: ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ
1: ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੇ ਨ ਭੰਗ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ
1: ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ
1: ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ
0: ਜਨ ਰਾਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ
1: ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ
0: ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ
1: ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਆ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ
0: ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ
1: ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ
0: ਬੋਧ ਬੋਧ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ
0: ਆਠ पहर जन हर हर जपै।
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपै,
0: हर की भक्त मुक्त बहु करे।
1: नानक जन संग के ते तरे,
0: बार जात ते हो हर को नाम।
1: नाम तेन हर हर गुण गाम,
0: सब ते उत्तम हर की कथा।
1: नाम सुनत दर्द दुख लथा,
0: नाम की महिमा संतरित बसै।
1: संत प्रताप दुर्त सब नसै,
0: संत का संग वट भागी पाई है।
1: संत की सेवा नाम ते आई है,
0: नाम तोल कश अवर न हो।
1: नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक।
0: बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल।
1: पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी
0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान,
1: शास्त्र सिमृत विख्यान।
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया,
1: सकल त्याग बन मध्य फिरिया।
0: अनक प्रकार किए बहु जतना,
1: पुण्य दान हूँ मैं बौरतना।
0: शरीर कटाई हूँ मैं कर राती,
1: वर्त नेम करे बहु भाती।
0: नहीं तो राम नाम विचार,
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार।
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव,
1: महा उदास तपीसर थीव।
0: अगन माही हुमत प्राण,
1: कनक हसब है भरपूर दान।
0: न्योली कर्म करे बहु आसन,
1: जैन मार्ग संजमय साधन।
0: निम्क निम्क कर शरीर कटावे,
1: तो भी हम मैं मैल न जावे।
0: हर के नाम सम सरकश नाही,
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे।
0: मन कामना तीर्थ दे छुटै,
1: गर्भ घुमान मन ते हुटै।
0: सोच करे दिन अर रात,
1: मन की मैल न तन दे जावे।
0: इस देही को बहु साध न करे,
1: मन दे कभु न दुखिया डरे।
0: जल धोवे बहु देह अनीत,
1: शुद्ध कहा होए काची भीत।
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच,
1: नानक नाम उदरे पतत बहमूच।
0: बहुत सियाणप जमका भव व्यापै,
1: नानक जतन कर तृष्ण ना त्रापै।
0: एक अनेक अगन नहीं बुझै,
1: ओट पावदर गैने सिजै।
0: सूत सुनाही उब पयाल,
1: लोहे व्यापै माया जाल।
0: अवर करतूत सगली जम डानै,
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै।
0: हर का नाम जपत दुख जाए,
1: नानक बोलै सहज सुभाए।
0: चार पदार्थ जे को मांगै,
1: सार जना की सेवा लागै।
0: जे को अपना दुख मिटावै,
1: हर हर नाम रदा सदकावै।
0: जे को अपनी शोभा लोरै,
1: साध संगे हम मैं शोरै।
0: जे को जन्म मरण ते डरै,
1: सार जना की शरणी परै।
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा,
1: नानक ताकै बल बल जासा।
0: सगल पुरख मैं पुरख प्रधान,
1: साध संग जाका मिटे अभिमान।
0: आप सुखो जो जाने नीचा,
1: सहु गनिया सब ते ऊंचा।
0: जाका मन होए सकल की रीना,
1: हर हर नाम दिन कट कट चीना।
0: मारे अपने ते बुरा मिटाना,
1: इक्या सगल सृष्ट साजना।
0: सुख दुख जन साम दृष्टिता,
1: नानक पाप पुन नहीं लेपा।
0: निर्धन को धन तेरो नाओ,
1: निथावे कौ नाओ तेरा था।
0: नमाने को प्रभु तेरो मान,
1: सगल घटाको देवो दान।
0: कर्म करावन हार स्वामी,
1: सगल घटाके अंतर जामी।
0: अपनी गतमत जानो आपे,
1: आपन संग आप प्रभु राते।
0: तुमरी उस्तत तुम ते हो,
1: नानक अवर न जान सकोए।
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म।
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया।
0: सगल उद्यम में उद्यम भला,
1: हर का नाम जपो जी सदा।
0: सगल बानी में अमृत पानी,
1: हर को जसम रसन बखानी।
0: सगल थान ते हो उत्तम थान,
1: नानक जे कट वसे हर नाम। श्लोक
0: निर्गुण यार ए अन्या, सो प्रभु सदा संभाल।
1: जिन की तिस जीत रख, नानक निभही ना। अष्टपदी
0: रमैया के गुण चेत परानी,
1: कवन मोहते कवन दृष्टानी।
0: जिन तू साथ सवार सिंगारिया,
1: गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया।
0: बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध,
1: पर जो बन भोजन सुख सूद।
0: बिरध पया ऊपर साख सैन,
1: मुख्य पया हो बैठ को दैन।
0: एहो निर्गुण गुण कुछ न बूझे,
1: बख्श ले हो तो नानक सीजै।
0: जय प्रसाद धर ऊपर सुख बस है,
1: सुत प्रात मीत बनता संग हसै।
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला,
1: सुखदाई पवन पाव के अमुला।
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा,
1: सगल समग्री संग साथ बसा।
0: दीने हस पाम करन नेत्र रसना,
1: इसे त्याग अवर संग रचना।
0: ऐसे दोख मूड अंध व्यापे,
1: नानक काड लियो प्रभ व्यापे।
0: आदि अंत जो रखनहार,
1: तिस्यो प्रीत न करे गवार।
0: जाकी सेवा नव निध पावे,
1: तस्यो मूड़ा मन नहीं लावे।
0: जो ठाकुर सदा हजूरे,
1: जाको अंधा जानत दूरे।
0: जाकी टहल पावे दरगाह मान,
1: तसे बसारे मुग्धा जान।
0: सदा सदा इहो भूलनहार,
1: नानक रखनहार अपार।
0: रतन त्याग कौटी संग रचे,
1: साच छोड़ झूठ संग मचे।
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर माने,
1: जो होवन सो दूर प्राण।
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे,
1: संग सहाय तिस पर हरे।
0: चंदन लेप उतारे धोए,
1: कर तप प्रीत भसम संग होए।
0: अंध कूप में पतित बिकराल,
1: नानक काड लियो प्रभु दयाल।
0: दूत पशु की मांस जात,
1: लोक बचारा करे दिन रात।
0: बाहर भेख अंतर मल माया,
1: शब्द नाहे कश करे छपाया।
0: बाहर ज्ञान ध्यान इशनान,
1: अंतर व्यापै लोप समान।
0: अंतर अगन बाहर तन स्वाह,
1: गल पाथर कैसे तरे अथा।
0: जा कै अंतर बसे प्रभ आप,
1: नानक तेजन सहज समाज।
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे,
1: कर गए लहो ओढ़ निभावे।
0: कहां बुझारत बूझे डोरा,
1: जिस कहिया तो समझे पूरा।
0: कहां बिशन पद गावे गोंग,
1: जतन करे तो भी सुर भंग।
0: पिंगल पर्वत पर भवन,
1: नहीं होत उहा उस गवन।
0: करतार करना मैं दीन बेनती करे,
1: नानक तुम्हारी कृपा तरे।
0: संग सहाई सो आवे न जीत,
1: जो बराई ता से प्रीत।
0: बलुआ के गृह भीतर बसे,
1: अंत केल माया रंग रसे।
0: दृढ़ कर्मा ने मन प्रतीत,
1: काल न आवे मूढ़े चीत।
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह,
1: झूठ प्रकार महा लोभ त्रोह।
0: क्याहूं जुगत बिहाने कई जन्म,
1: नानक राख लेहो अपन कर कर्म।
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास,
1: जीव बिन सब तेरी रास।
0: तुम मात पिता हम बारिक तेरे,
1: तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे।
0: कोई न जाने तुमरा अंत,
1: ऊचे ते ऊचा भगवंत।
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी,
1: तुमते होए सो आज्ञाकारी।
0: तुमरी गत मिल तुम ही जानी,
1: नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक
0: दिन हर प्रभु छोड़ के लागे आन सवाई,
1: नानक कहूं नसी जाई बिन नामे पत जाए। अष्टपदी
0: दस बसूले पाछे पावे,
1: एक बस्त कारण बिखो टकवावे।
0: एक पीना दे दस पी हिरले,
1: दो मूड़ा को कहां करे।
0: जिस ठाकुर से नाही चारा,
1: ठाकुर की जय सद नमस्कार।
0: जाके मन लगा प्रभु मीठा,
1: सर्व सुखता हूँ मन बुठा।
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
1: सर्व सुख नानक तिन पाया।
0: अगंत शाह अपनी दे रास,
1: हाथ पीत बरते अनंत उलास।
0: अपनी ईमान कश बहु शाह होले,
1: अज्ञानी मन रोस करे।
0: अपनी प्रतीत आप ही होवे,
1: और उसका विश्वास न होवे।
0: बसते सागे रखे,
1: रोकी आज्ञा मन ने मथ।
0: उसते चौगन करे निहाल,
1: नानक साहिब सदा दयाल।
0: अनक भांत माया के हित,
1: सरपर होवत जान अनेत।
0: बिरख की छाया से रंग लावे,
1: ओ बिन से ओ मन पछतावे।
0: जो दिस सो चालन हार,
1: लपट रहे होते अंधे अंधार।
0: कटाऊ से जो लावे नेह,
1: ताको हाथ न आवे के।
0: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई,
1: कर कृपा नानक आप ले लाई।
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
1: मिथ्या हो मैं ममता माया।
0: मिथ्या राज जोगन धन माल,
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल।
0: मिथ्या
1: मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता,
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान।
1: मिथ्या आप से ऊपर करत गुमान,
0: सिर भक्त साध की शरण।
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण,
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे।
1: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
0: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रिया रूपाद।
1: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
0: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे।
1: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा।
1: मिथ्या बास लेत बिकारा,
0: बिन बूझे मिथ्या सब भये।
1: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
0: बिरथी साक्त की आरजा।
1: साच बिना कह हो सुचा,
0: बिरथा नाम बिना तर अंध।
1: मुखे आवतता कह दुर्गंध,
0: फिर सिमरन दिन रहन बिरथा विहाए।
1: एक बिना ज्यो खेती जाए,
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम।
1: कृपण के निरार्थ दाम,
0: धन धन तेजन दे घट बस्यो हर नाउ।
1: नानक ताके बलबल जाओ,
0: रहते अवर कश अवर कमावत।
1: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत,
0: जानन हार प्रभु प्रवीन।
1: बाहर पीक न काहू भीन,
0: अवर उपदेश है आप न करे।
1: आवत जावत जन मैं मरे,
0: जिसके अंतर बसे प्रभाप।
1: इसकी सीख तरह संसार,
0: जो तुम भाने दिन प्रभ जाता।
1: नानक निजन चरण पराता,
0: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने।
1: अपना किया आपे मन,
0: आपे आप आप करत नबेरा।
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा।
0: पाप से अनप सकल ते रहत,
1: सब कछ जाने आत्म की राहत।
0: जिस भावै तिस लए लड़ लाए,
1: शांत अंतर रहा समाए।
0: सो सेवक जिस कृपा करी,
1: निमक निमक जप।

0: देव राष्ट्रपति
1: दे प्रसाद छति ही अमृत खाहे
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे
1: दे प्रसाद सुगंध तन लावहे
0: जिसको समृत परमगत पावे
1: दे प्रसाद बसे सुख मंदर
0: चाहते आये सदा मन अंदर
1: दे प्रसाद गृह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरोत सरसना
1: दे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ते आये ते हमन जोग
1: दे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे
0: इसे त्यागत अवर लुभावे
1: दे प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस गावीजय
1: दे प्रसाद तुल सब को माने
0: मुक्ता को जस रसन बखाने
1: दे प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
1: रब जी जपत दरगाह मान पावहे
0: नानक पत से ती कर जावे
1: दे प्रसाद अरो कंचन देही
0: निबला बहुत सराम स्नेही
1: दे प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: दे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: दे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन सास सास मरो प्रभु उच्चे
1: दे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
0: नानक ताकी भगत करे
1: दे प्रसाद अपूखन पहरीजे
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे
1: दे प्रसाद असवर सवारी
0: मन तिस प्रभु को कभो न विसारी
1: दे प्रसाद बाग मिलख तना
0: राग प्रय प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत्य सह ध्याय
1: इसे ध्याय जो एक लख है
0: यहाँ उहा नानक तेरी रख है
1: दे प्रसाद करे पुन बहु दान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: दे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभु को सास सास तारी
1: दे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: दे प्रसाद तेरी नीति जात
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: दे प्रसाद तेरी पत रह
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: दे प्रसाद सुनहि कर्ण नाद
0: दे प्रसाद पेख विस्माद
1: दे प्रसाद बोले है अमृत रसना
0: दे प्रसाद सुख सहजे बसना
1: दे प्रसाद हस्त कर चल है
0: दे प्रसाद संपूर्ण फल है
1: दे प्रसाद परम गत पावहे
0: दे प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: दे प्रसाद तू प्रकट संसार
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार
1: दे प्रसाद तेरा प्रताप
0: दे मन मूड तू ताको जाप
1: दे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: इसे जान मन सदा हजूरे
1: दे प्रसाद तू पावे है साच
0: दे मन मेरे तू तास्यो राज
1: दे प्रसाद सबकी गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाई जपे सोनाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विकास
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मतूतन होए
1: सर्वन धन प्रभु तेरी माया
0: आपो कछु न किन्हु लया
1: जत जत लाभ हो तत लगे हैं हर नाथ
0: नानक इन के कछु न हाथ श्लोक
1: अगम अगात पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुख ताहो
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी
1: साध का संग मुख उजल होत
0: साध संग बल सगली खोत
1: साध का संग मिटे अभिमान
0: साध का संग प्रकट है सुज्ञान
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
0: साध संग सब होत न बेरा
1: साध का संग पाए नाम रतन
0: साध का संग एको ऊपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
1: साध का संग अगोचर मिले
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल
1: साध का संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग न कथू पावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किस्यो नी बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नाही हों ताप
0: साध के संग ते जैसा व्याप
1: आपे जाने साध पढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कब हूं तावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर रह
0: साधु के संग अजर सह
1: साध के संग बस है थान ऊंचे
0: साधु के संग महल पहुंचे
1: साध का संग दृढ़ है सब धर्म
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म
1: साध का संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध का संग सब कुल उधार है
0: साध संग साधन बीत कुटम निस्तार है
1: साधु का संग सो धन पावे
0: जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध का संग शोभा सुर देवा
1: साधु का संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध का संग सर्व थान गम
0: नानक साध का संग सगल जनम
1: साध का संग नहीं कशकाल
0: दर्शन भेट तो होत नहाल
1: साध का संग कुलूकत हरै
0: साध का संग नरक पर हरै
1: साध का संग इहा उहा सुहेला
0: साध संग मिश्रित हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक कुदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाम
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मन ते बिसरे
0: साध संग सर परमेश्वर है
1: साध के संग लगे प्रभु मीठा
0: साधु के संग करकड़ जीठा
1: साध संग भय आज्ञाकारी
0: साध संगत भय हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा भेद न जाने हैं
0: जिता सुन तेता बखियान
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का ना ही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूंचते मूंची
1: साध की शोभा साध बनाई
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे
0: कस बिन कोए
1: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल जल में कमल लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख,
0: जैसे सूर सर्व को सुख।
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान,
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान।
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक,
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले।
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ,
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव।
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
0: जैसे मैल न लागे जला।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश,
0: जैसे तर ऊपर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा,
0: मन अपने है सब ते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये,
0: नानक जन प्रभु आप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा,
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा।
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा,
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा।
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला।
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग।
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद।
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र।
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए।
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत माहे,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने ते,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता।
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम, सर्व में देखै भगवान। निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस,
0: मन में प्रीत नरंजन दर्स।
1: अत्रिया रूप न देखै नेत्र,
0: साधक टहल संत संग हेत।
1: कर्ण न सुनै काहू के निंदा,
0: सबते जाने आपस को मंदा।
1: और प्रसाद विद्या पर हर है,
0: मन की वासना मन ते टरै।
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत,
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस।
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न,
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न।
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म,
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म।
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचै,
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै।
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल,
0: सबु प्रभोवत कृपाल।
1: आप दृढ़ है अवराह नाम जपावै,
0: नानको वैष्णो परम गत पावै।
1: भगवती भगवंत भगत का रंग,
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग।
1: मन ते बिनसै सगला भरम,
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म।
1: साध संग पापा मल खोवै,
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै।
1: भगवंत की टहल करै नित नीत,
0: मन तन अर्पै विष्ण प्रीत।
1: हर के चरण हृदय बसावै,
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै।
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है,
0: राम नाम आत्म सुध है।
1: राम नाम सार रस पीवै,
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवै।
1: हर की कथा हृदय बसावै,
0: सो पंडित फिर जोन न आवै।
1: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल,
0: सुख मै जानै अस्थूल।
1: जो वरना को दे उपदेश,
0: नानक उस पंडित को सदा देश।
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान,
0: जो वरना मै जपे को नाम।
1: जो जो जपे तिसकी गत होए,
0: सा संग पावै जन कोई।
1: कर कृपा अंतर उतार है,
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है।
1: सर्व रोग का औखद नाम,
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम।
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म,
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास।
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास संतन पाए तिन पाया।
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सो दास दरगा परवान।
1: अपने दास को आप कृपा करे,
0: जिस दास को सब सो जी पर।
1: सगल संग आत्म उदास,
0: ऐसी जुगत नानक राम दास।
1: रब की आज्ञा आत्म हिता वै,
0: जीवन मुक्त सो कहावै।
1: तैसा हक तैसा उस सोग,
0: सदा अनंत नहीं वियोग।
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अमृत तैसी काटी।
1: ऐसा मान तैसा अभिमान,
0: ऐसा रंग तैसा राजान।
1: जो बरताई साई जुगत,
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त।
1: पार ब्रह्म के सगले ठाउ,
0: जित जित कर रखे तैसा तन्ना।
1: आपे करन करावन जोग,
0: भावे सोई पन होग।
1: असरियो आप होए अंत तरंग,
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग।
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश,
0: पार ब्रह्म करता अविनाश।
1: सदा सदा सदा दयाल,
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल। श्लोक
1: उस्तत करे अन

सिर्फ जड़ भूसा हो गए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखों का जल्दी जन्म नहीं आता, हिटलर जैसों का जल्दी जन्म नहीं आता, हर नाकस जैसों का जल्दी जन्म नहीं आता। कितना मूड, कितना अचेत पशुआ नू मात कर गया। 7 साल दे प्रहलाद नू मासूम बच्चा है, हर नाकस कहिंदा तू जपया कर, जल हर नाकस थल हर नाकस, ताकि तेनू वेख के होर बच्चे भी जपन, ते असी निरंकार करके दुनिया दे च जाने जाइए। निरंकार होने की तौफीक मनुख नू निरंकार ने दिती है, ध्यान नाल सुनना। निरंकार होने की उमंग ते तड़प भी मनुख नू दिती है। मनुख ऐसा जीवन चाहता है जिहदे च मौत ना होवे, ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे च ना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, उस महाशक्ति का ना ही तो परमात्मा है, और की है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होने की सौगात परमात्मा ने हर मनुख नू दित्ती है, हर एक नू दित्ती है। किस तरह? परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है, सब कुछ नू वेखण दी तौफीक नहीं, पर वेखदा है। परमात्मा सुनदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी रे। सदा वेखदा पै, सब नू वेखदा पै, सब नू सुनदा पै, सदा सुनदा पै। ठाकर हमरा सद बोलनता, सदा बोलदा पै, और उदा बोल सारी दुनिया दे गूंज रहा है। अनाहद ना मनुख भी सुनदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमत है। मनुख भी जानदा है पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वास्ते जफर कहिंदा है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को। मनुख तो वध परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआं दा भविष्य अजय मनुख होना है, बनस्पति दा भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरां दा भविष्य ते अजय बनस्पति होना है। केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी का महीना पिछलिया, इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम पिया करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं कह खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 बजे कि कौन फोन करता। दिल्ली तो एक नौजवान पूछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कह लगे कि फिर हूँ तुसी आ रहे हो ना दिल्ली? की बाई, संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुँचना सी, तुसी आ रहे हो? असी पोस्टर पढ़े ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहो दो ते गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना, तुसी हुणे ही पूछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस देंगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार दे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं।

चुनाओ दुई कुदरत साजिया करा सिंध ठचाओ दाता करता आप तू तुस्त वेकरे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करा सिंध ठचाओ करा सिंध ठचाओ।

0: जाको आप करे प्रगास पौड़ी
1: जीव पाए के लिखना मैं तुरं बहालिया उत्ते सच्चे ही सच निबड़े चुनमकड़े जजमालिया थाउ ना पाइन कूड़े यार मुंह काले दुजग चालिया तेरे नारे ते सहजन के हार के सिठकन वालिया लिखना।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंगे फिर हैं जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडा विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद विखे हाजरा

पड़ गड्डी लदी है पड़ परियां सात पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ गड्डियां खात पड़ियां जेते बरस बरस पड़ियां जे

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताव ना हो। तू करता करना मैं ना ही जा हूं करी ना हो। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया राओ। जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहे। तू सच्चा साहिब सिफ सवाल जिनकी

पूर मथा टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहरो है प्रवाण मलेस ना ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना जे कह चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़े यार मत पिटे वे मत पिटे ओ आना साडा पिटे।

0: शब्द तरूपया।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट

0: जी की फतेह।
1: गुरु की साजी निवाजी, गुरु प्यारी संगत, वड्डे भाग हन सतगुरां दे हजूर सज बैठ के आप गुरु की गोद का आनंद माण रहे हो। कुछ समा होर आनंद प्राप्त करांगे। अमृत वड़े धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने अपने सोहने पवित्र तखतों उपर प्रकाशमान हो के अलाही बाणी तुर की बाणी राही सच्चे पातशाह ने निहाल किया है, दर्शन दीदार बख्शे हैं। अमृत वड़े सरबत संगतां दे भले लई सांझा उपदेश अलाही फरमान मुख वाक बख्शिश किया है। सो सतगुरु मेहर करन आए हुए मुख वाक दी विचार सीमित समय विच रह के करन दा यतन करांगे, क्योंकि अपने पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। ये कोशिश करांगे कि सच्चे पातशाह महाराज कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज द्वारा श्री दमदम साहिब के स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं संपूर्णता बख्शिश की, और उस दिन ही दमदम टकसाल ते टकसाल चलाईयां गुरु कलगीधर जी ने। सतगुरु मेरा करन सतसंगीओ, अज संपूर्णता दिवस गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, और नाल दी नाल महापुरशां दी याद संगतां मना रही हैं। सो रसना करांगे पवित्र

0: गुरु अर्जन देव जी कहिंदे सुन बिनो सुहागण मेरी हे सुहाग बंती बेनती सुनो कि मूँह दस डिखा पिर कही है मैनू दसना करो मेरा भेत परमात्मा वाहिगुरू किहो जिहा है।
1: यार वे पिर आपण पाणा किछ नी सी छंदा।
0: हे यार वे हे प्यारे जियो पिर आपण पाणा पिर प्यारा परमात्मा अपना पाउंदा है किछ नी सी छंदा ते उदे वर्गा कौन है कोई नी है।
1: यार वे तै रविया लालन मूह दस दसंदा।
0: यार वे ते राविया लालन ऐ सखियो सत संगियो तुसा ने प्यारे परमात्मा नू राविया है आनंद नू भोगया है मूह दस दसंदा मैनू भी दसना करो कि प्यारा परमात्मा के

0: मैं एक दफा जींद दे च गौ लै बैठा, खरीद बैठा, बड़ी खूबसूरत सी, चंगी लगी मैनू। हर साल मैं उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ज्योति जोत समान पुरब ते जाना हुंदा। महापुरखां दा डेर है ओ मनांदे ने, संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर। ओ मेरे कोल पुछण लगे, सुनया तुसी गऊ खरीदी है? मैं क्या, जींद ते रोहतक ए गऊआं करके मशहूर है, अच्छियां अच्छियां गऊआं। मैं कह मैनू बड़ी चंगी लगी है, मैं ले लई। ओ आ गए, कहण लगे मैनू दिखाओ। मैं कह देखो, जींद शहर दे बड़ियां सरावां ने जो गऊआं नाल भरियां रहिंदियां ने। मैं चल के दिखाई, उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया। खिंड के ज्ञानी जी इनू लेके जा रहे हो? मैं क्यों, ये ठीक लक्षण नहीं ने, औखे होवोगे, दुखी होवोगे। ये सिर्फ दिसण नू खूबसूरत है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थानू लक्षणा का पता नहीं, सानू पता है। जे तुसी गौ लैनी है ते असी थानू लेके देंगे। ओ जिस वपारी कोल मैं लई, जाके संता ने उन्हों डांटिया भी मस्कीन, और इन्हू गौ तक डंग दी देनी सी, ये की कीता तू? ओ हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज जी की करी, इन्होंने आप ही पसंद की है, इन्होंने आप ही पसंद की थी। वो कहन लगे, इन्हों लक्षणा का पता नहीं है। वाकई मैनू गौ दे लक्षणा का पता नहीं सी। कुछ लक्षण ऐसे ने, दिस पैंदा है इराकी घोड़ा है, वधिया घोड़ा है, ये वधिया गऊ है। लक्षण ही दस देंदे ने, ये जमीन वधिया है, धरती वधिया है, ऐसे खोजी मौजूद ने। अज ते विज्ञानक ढंग नाल खोज करदे ने, ये धरती बड़ी उपजाऊ है, बहुत वधिया है। लेकिन पुराने जमाने दे सूईए लक्षण देखदे सन। तो मैं अर्ज करा, मनुख धार्मिक है, धार्मिक मनुख दे कुछ लक्षण होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करते। उन्हां लक्षणा तो पता चलता है धार्मिक है। मनुख संत है, भगत है, लक्षणा तो पता चलता है संत है, भगत है। ये लक्षण ते मैं बाद दे च बयान करांगा। पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये पावन पवित्र शब्द, वो कहिंदे ने, मैं धर्म दे मार्ग ते चलिया ते हां, अपने उत्ते लैंदे ने, मैं उस बच्चे दी तरह चलिया जिसने अज चलना सिखिया। ते जिस बच्चे ने अज ही चलना सिखिया वो कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा, गिरेगा, लाजमी गिरेगा। बच्चा लंबा पेंडा तय नहीं कर सकता। जैसे शरीरक तौर ते मनुख बच्चा होवे, ते ओ बच्चा जिसने अज चलना सिखिया कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा, गिरेगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सरवन ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु, हे गुरु, तू मेरी बांह पकड़, मेरी उंगल पकड़, मैं नहीं चल सकता, मैं तो गिरदा। वाकर दी लोड़ पैंदी छोटे मासूम बच्चे नु चलन वास्ते। मां बाप दी उंगल पकड़ के चलना सिखदा है। सतगुरु कहिंदे ने, हे प्रभु, मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सिखिया, तो कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा। धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे, चल भी रहा ते गिर भी रहा। सच बोले है चल पे है, झूठ बोले है गिर गया। अंदर दया दा वासा होया चले है, अंदर कठोरता दा वासा होया गिर गया। अंदर दान दी रुचि पैदा हुई है चल पे, अंदर बेईमानी दी रुचि हुई है गिर गया, गिर गया। अंदर नितनेम करण दा चाव पैदा होया चल पे, पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न दा चाव पैदा हो गया गिर गया। हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहता। धार्मिक तरते ते कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहते, कुछ भी नहीं, चलते ने गिरते ने। सत्संग भी कर लेंदे ने, कुसंगत भी कर लेंदे ने, दान भी कर लेंदे ने, बेईमानी भी कर लेंदे ने, सच भी बोल लेंदे ने, झूठ भी बोल लेंदे ने। जीवन भर ऐसा चलता है। इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है, बुजुर्गी बा अकलस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल। बुजुर्गी उम्र करके नहीं है भाई, ये 70 साल का है, 80 साल का है, 90 साल का है। कहिंदन उम्र करके बुजुर्गी नू ना नापो, अकल करके नापो। अकल कितनी है, समझ कितनी है। कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने, अकल करके बच्चे ही होंदे ने। बच्चियां दी गल करदे, बिल्कुल बचपना होंदा है। इस तो उल्ट भी हो सकता है, कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने, अकल करके बुजुर्ग होंदे ने। शरीर करके ते 5.5 वर्यां दे ने धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, जिस दिन गुरगद्दी ते बैठे ने। अकल करके 100 साल दे ने, बुजुर्ग ने, महान ने। शरीर करके जो दीवारां दे चिणे जा रहे ने, मासूम बच्चे ने, मासूम बच्चे ने। अकल करके बुजुर्ग ने, बुजुर्ग ने। इस तो उल्ट भी है, शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए, अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने। मैं कैलीफोर्निया दे कई गुरुद्वारे च देखे 70-80 साल दे बुढ़े 10-11 बजे आ जाते हैं गुरुद्वारे, दिन भर ताश खेडते ने कई गुरुद्वारे, गप्पा मारते ने, निंदा उस्तत करते ने। फिर जो संध्या होने लगती है, रहराज साहब का पाठ शुरू होता है, कथा कीर्तन का वेला, भजते ने इंज जिवें बिच्छू कटेगा, भजते ने। हुण गुरुद्वारे का नाम है की लिया, मैनू कहना पिया एक नू जद जान लगे, मैं कह 3 जथियां का कीर्तन है अज। एक जथा दरबार साहब तो आया, 2 होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने, ते मैं कथा भी करनी है। रुक जाओ, कहिंदे इत्थे हुंदा ही रहिंदा, इत्थे होर की होना, इत्थे ऐ हुंदा ही रहिंदा। तो उत्थे मैनू कहना पिया, ये उम्र करके बुजुर्ग ने, अकल करके बच्चे ने, अकल करके बच्चे। गुरु हरकृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है, 60 वर्यां दा हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नू कहिंदा है, तू जपया कर जल हर नाकश थर हर नाकश, जब तू जपेगा ते तेनू देख के बाकी बच्चे भी जपनगे। ते 7 वर्यां दा प्रहलाद कहिंदा है, बापू की बच्चियां वाली गल कर दे हो, जल है राम थल है राम। ये 7 साल दा बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है, और 60 साल दा बुढ़ा बच्चियां वाली गल करदा है। बच्चियां दे कदी कदाई कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़िया दे च बहुते ते बच्चे ही होंदे ने, गुस्ताखी मर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। जिंदगी एवें गवाई जांदे ने। ताश खेडदे होयां नूं एक सज्जन ने पूछ लिया, की कर रहे हो? समा पास पै कर दे। फिर मैनू विचकार बोलना पिया, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नू सफल करो जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया। आजू समझ कच बिगड़े हो ना ही, बजले नाम मोरा। अजे भी कुछ नहीं बिगड़े तो संभाल कर ले, पर नहीं अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकल अस्त, नखे बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त, नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोल इतने मकान ने, इतनिया महल माड़िया ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहंदे ने, यह अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तो पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है। दिल तो नापो। मुहम्मद साहब के निकटवर्ती हजरत उमर, ये बसरा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर हो, नखलिस्तान उसनों कहने, जिते चार पांच दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहते ने। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होंदी है। उत्थे रुके आराम करन, ऊठ नूं दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूंह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे कि भिखारी आ गए। भिखारी नहीं सी, पर चूंकि मंगदा पिया सी इस वास्ते मंगता। उन्हें आखिया, हजरत मैं तीन दिन का भुखा। कूत शहर दे च मैं जाना है, अजे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं? पैदल हाँ, तुहाडे कोल उठ है, बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता, ले। पर ओ भी समझदार बंदा सी, कहन लगा, नहीं तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार रहे, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आख्या? तू तीन दिन का भुखा, मैं अधे दिन का भुखा, मेरे ते नान खाना हराम है, ए ले तू। उस मनुख ने आख्या, पहली दफा एक अमीर मनुख देखे है, अमीर मनुख। दोपहर का वक्त सी, महात्मा बुद्ध एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे ने, नाल चेला है आनंद, जो रिश्ते दे चचेरा बिरा सी, चेला बन गया सी, नाल सी। उन्हें करमंडल पानी का नाल भर लिया, बई दोपहर का वक्त बिहार की गर्मी, आखिर दो को दा पेंड है, चार मील का पेंड है, अजे अद्धी वाट तय हुई होगी। महात्मा बुद्ध ने आख्या, आनंद तू नाल पानी लिया? हां लिया, दे करमंडल दे दिता, सारे का सारा एक बूटे च पा दिता। आनंद कहिंदा, भगवान सानू प्यास लग सकती है, अजे ते रस्ता बहुत रहिंदा है, अद्धी वाट तय हुई है, सानू भी प्यास लग सकती है, तुसी सारा पानी दे दिता। महात्मा बुद्ध ने आख्या, सानू प्यास लग सकती है, ये प्यास तो मर रहा सी, मर रहा सी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਵੱਖ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਨ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਾਨੇ। ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਦਾ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਰੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਨੇ ਕੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗਤ ਦਾ, ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਖੋਗੇ? ਮਹਾਸ਼ੋਮ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ। ਲਕਸ਼ਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਾ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਅੰਗੂਰੀਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ। 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ, ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਦੇ 3 ਅਰਥ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। मैं अर्ज करा घट लोगों की सुरत शब्द की तरफ चलती है। इस वास्ते पढ़न दे नालों गुरबाणी पढ़न दे नालों सुनना लखां गुणा औखा है। बिना सुरत तो सुन ही नहीं सकेगा, नहीं सुन सकेगा, पर बिना सुरत तो पढ़ सकेगा। भटकी हुई सुरत नाल भटके हुए ध्यान नाल भी पढ़ सकता है। पढ़ने वास्ते ध्यान बार करना पैंदा है, नजरां भी बार करनियां पैंदियां, सुनने वास्ते ते शायद अखां भी बंद करनियां पैन, और ध्यान नु अंतरमुखी करेगा ता ही सुन सकेगा, वरना नहीं सुन सकता। ये भी मैं अर्ज करा। एक मनुख उची उची बोल रहा हुंदा है, दूजा सुन रहा हुंदा है, सुनन वाला फिर कह देंदा है, एक दफा फिर आख मैं नहीं सुनिया, तू क्यों नहीं सुनिया? कहिंदा मेरा ध्यान किसे और पासे चला गया। इहदा मतलब ध्यान शब्द दे च नहीं, पाठ कर रहे है ध्यान नहीं है, अजे इनू चलना नहीं आया, नहीं आया। समाज सुधारक ने, राजनैतिक लोगों ने जो मनुखी समस्यावां दा समाधान पेश कीता, उहदे नाल वक्ती तौर ते सिलसिला ठीक, लेकिन मन दियां बेचैनियां दूर नहीं होईयां। हर मुल्क बेचैन है, हर मुल्क परेशान है, हर मुल्क चिंता तुर है। समाज सुधारकां ने ते राजनैतिक लोगां ने जो समाधान पेश कीते, इहदे नाल मनुख दी समाधि ते लगी ना आनंद ते मिले ना। अवतारी पुरशां ने जो समाधान पेश कीते, लोगां ने कबूल ना कीता। किहड़े अवतारी पुरश नूं लोगां ने कबूल कीता है? किसे नूं तत्ती तवी ते बिठाया, किसे नूं जेल दे च पाया, किसे दे बंद बंद कटे ने, किसे नूं सूली ते लटकाया, किसे नूं बनवास भेज दिता है? किहड़े अवतारी पुरश नूं वक्त दे लोगां ने कबूल कीता? नहीं कबूल कीता। भगतां नूं भी नहीं कबूल कीता। कबीर दे उत्ते बड़े वड्डे तीन इल्जाम लगे ने, कतल दा इल्जाम लग्या, जेल भी भोगनी पई, चोरी दा इल्जाम लग्या, सिकंदर लोदी ने अंदर पाया, दुराचार दा भी इल्जाम लग्या। केड़ा इल्जाम नहीं लग्या? ईर खालुआ ने सोचिया उंज ते पकड़िया नहीं जाएगा, कोई ऐसी व्यौंत बनाई अंदर ही जाए, एदा बाहर होना ठीक नहीं, हद हो गई। समाज सुधारक ते राजनैतिक मनुख दियां मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश ना कर सके, बनी हुई है समस्या। हर मुल्क दे समाज सुधारक ते राजनीति मौजूद है, पर बेचैनी मौजूद है, परेशानी मौजूद है, चिंता मौजूद है। संत जना ने, भगत जना ने, अवतारा ने जो मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश कीता, वो मनुख ने कबूल नहीं कीता, परवान नहीं कीता। तो समस्या त्यों दी त्यों बनी हुई है, हजारां साल तो बनी हुई है, और रोज रोज मनुखता दे तल ते बेचैनी परेशानी वधदी जा रही है, घटदी नहीं पई। मन दी समस्यावां दा समाधान की है? महाराज कहिंदे ने धर्म। इहदे नाल मन दी समाधि लगेगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, महारस की प्राप्ति हो जाएगी, महाखेड़े ते खुशी की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म की है? जो निर्मल कर्म ते खड़ा है, ते निर्मल कर्म की है? हर को नाम जप निर्मल कर, बस ऐ निर्मल। कल मैं अर्ज कीती सी, मनुखां दी सारी गति हलचल बोल चाल नाल कायम है, शब्दां दे कायम है। शब्दां दी बड़ी महिमा है, बोलां दी बड़ी महिमा है। दो कौड़े बोल बोले ने, अगला सारी रात तड़पदा रह गया। हुण उहनूं कोई आखे ना तैनूं कोई सूआ लगे, ना तीर लगे, ना गोली लगी है, एवें तड़पी जा रहे। दो बोलां ने तड़पा के रख दिता, दो बचना ने तड़पा के रख दिता, पर दो मिठे बोल तड़प दे दिल नूं शांति भी दे सकते। प्रभु दा नाम एक बोल है, बोल नो संस्कृत विच मंत्र कहंदे ने, शब्द कहंदे ने। शब्द मंत्र बोल वाक इको ही गल है। गुरु दा वाक, गुरु दा शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दी आवाज, गुरु दा मंत्र। मैनू चंगी तरह याद है अजे भी पंजाब दे कुछ पिंडा च आवाजा लो गुरु दा वाक नो हुक्मनामे नो इंज कहिंदे, गुरु दा आवाजा लो। इधर फ्रंटियर लहिंदा पंजाब जो पाकिस्तान दे चला गया, आउणा ते ग्रंथी साहब नू कहिंदे सन गुरु दा बोल सुना दो, हुक्मनामा सुना दो। पंजाबी च बोल कह देंदे ने, वाक कह देंदे ने, संस्कृत दे शब्द कह देंदे ने, मंत्र कह देंदे ने। गुरु मंत्र, गुरु शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दा वाक। उस वाक नू बार बार जबान दोहरावे ते मन सुने, मन दे चों दुख निकल दे जांदे ने, पाप निकल जे जांदे ने, और एक दिन वो मंत्र सिद्ध हो जांदा है। कहिंदे ने वाक सिद्ध हो गए, मंत्र सिद्ध हो गए, बोल सिद्ध हो गए, शब्द सिद्धि इस नू मिल गई। कल दे बोल मैं थानू दोहरावा, जद बोलन दा मन दे ख्याल आउंदा है, उरना आउंदा है, पवन नाभी नाल टकरांदी, नाभ खुलदी है, नाभी खुलदी है, उत्थों धुन उठदी है, इस वासे नाभी नू धुन ही कहिंदे ने। ऊ जिहड़ी धुन उठदी है उहनू परा कहिंदे ने, धुन है, लेकिन अजे उस दे विच शब्दां दा अक्षरां दा मेल नहीं है। धुन ते गुंगा भी खड़ी कर लेंदा है, पर शब्द उसनू नहीं दे सकता। इस वास्ते धार्मिक दुनिया विच गुंगा पछड़ जांदा है, बिल्कुल पछड़ जांदा है। अंधे ते संत होए ने, अज मैं सवेरे ही सुना रहा सी गुरुद्वारे देच, कि सूरदास ते नेत्रहीन सी, अंधा सी, भगत बन गया। उहदी इक पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्ज है। पर किधरे भी किसे धर्म ग्रंथ देच और इतिहास देच नहीं मिलदा कि कोई गुंगा ब्रह्म ज्ञानी बन गया हो, कोई गुंगा पूरन संत बन गया हो, कोई गुंगा ब्रह्म ज्ञानी बन गया। विकास रुक जाता है, शब्द का जप नहीं कर सकता। जब शब्द नू वार प्रगट नहीं कर सकता, भोजन बना ही नहीं सकता, तो खाएगा कि इतने आप खाना पैंदा, आप बनाना पैंदा, अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। कल दे लफ्ज मैं दोहरा दया, शरीर दा भोजन हथ कमांदे ने, हथ बनांदे ने, मुंह खांदा। मन दा भोजन जबान बनांदी है, कन छकदे ने। सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, गावीए सुनिए मन रखिए। जबान भोजन बनांदी है, वाहे गुरु वाहे गुरु, कन्ना द्वारा मन छकदे। जैसे शरीर दे भोजन पहुंचता है मुंह द्वारा, मन दे शब्द पहुंचता है कन्ना दे द्वारा। भोजन नो शरीर दे रोम रोम तक पहुंचाना, आखिर भोजन ही बच के होन बनता है, ते सारे शरीर ही दौड़दा है। भोजन ही बच के पच के मांस बनता है, हड्डियां दी शक्ति बनता है, इंद्रियां दी शक्ति बनता है। जो असी भोजन खांदे हां उसका लोड़वंद हिस्सा शरीर दे विच रह जांदा है, बाकी खारज हो जांदा है। जो असी वेखदे हां, बोलदे हां, सुनदे हां, जिस नाल मन जुड़ जांदा है, ओ ते मन दे च रह जांदा है, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਜ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨਣ ਦਿੱਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਬੋਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੈਸੇ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਏ, ਇਨ ਬਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਕਣਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕੀ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ, ਤੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਛੱਕ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੋਮਿਟ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, 4 ਦਿਨ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪੇ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ, ਪੁੰਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰੂੰ, ਪਚਾਵੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जपदिया माड़ा जिहा अनुभव मिलिया है, बस हुण हजम नहीं आता। दो चार दिन अमृत वेले उठे है, दूजियां नूं एवें ही समझण लग पे। मैं एक इस्लामी गाथा पढ़ रहा सी, मुहम्मद साहब दे दोते हसन हुसैन, ए मुहम्मद साहब दे दोवें दोते सन, हजरत अली दे पुत्र सन। हजरत अली आप दा दामाद सी, हसन छोटा जिहा 7-8 वरिया दा, अपने नाना हजरत मुहम्मद साहब नूं कहिंदा फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी। 5 नमाजां ने ना, फजर दी, जोहर दी, असर दी नमाज, मगरब दी नमाज, फिर रात दे समय इस टाइम है इशा दी नमाज, 5 नमाजां। फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी, जोहर दी ओ पढ़दा सी, मगरब दी ओ पढ़दा सी, पर फजर अमृत वेले सुता बच्चा आखर सुता रहिंदा सी। कहिण लगा अपने नाने नूं मैनू भी उठाना, फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी, तुसी बड़ी महिमा दसदे हो फजर दी नमाज दी, मैं भी पढ़नी। भावे मुहम्मद साहब ने कहा तू अजे बच्चा है, चलो जोहर दी पढ़ लैंदा, असर दी पढ़ लैंदा, ठीक। उन्हें जिद कीती, मुहम्मद साहब ने उसनों फिर जगा लिया, ठीक है, जिद करता है बच्चा, कहिंदा फजर दी पढ़नी है। सवेरे लै गए खाना खुदा दे, पढ़ी उसने नमाज, उन्हों महसूस होया इशा असर मगरब जोहर दी नमाज तो जिहड़ी फजर दी नमाज है इहदे च बरकत बड़ी है, रस बड़ा है। धन गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे ने हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजे आ, भगत खाए खर्च रहे निकुटे ना। बड़ी बरकत है, उन्हों रस आया, उन्हों कुछ खेड़ा मिले, उन्हों कुछ ताजगी नसीब हुई, उदी मन दी दुनिया कुछ प्रफुल्लत हुई। नमाज पढ़ के दोवें वापस आ रहे नाना ते दोता। ये अरब दा इलाका गर्मियां दे महीने, लोकी बाहर सुते हुए कोठियां ते सुते हैं, खुले। पुराने जमाने च इस तरह ही होंदा सी। हसन हजरत मुहम्मद साहब नूं कहिंदा है किन्ने बदकिस्मत ने मूर्ख ने, आबे हयात खुदा वंड रहा है ये सुते पए ने, बड़े मूर्ख ने। पता है मुहम्मद साहब ने की आख्या, वो एक दिन फजर दी नमाज पढ़ी उन सारे ही मूर्ख दिखाई देने लग पे, तू अपनी नमाज कजा की थी है, मेरे भी कजा की थी, इन्हां ते तरस करना चाहिए सी, तो मूर्ख कहने लग पे। आ चल के फिर पढ़ी है, तू अपनी भी कजा की थी है, मेरी भी कजा की। इस तरह मैं देखदा 4-5 दिन कोई नाम जपदा है, माड़ा जिहा किते रस आए ओहदे नाल पैस करदा है, ओहदे नाल बह, ओहदे नाल गुथम गुथा, ओहदे नाल गुथम गुथा, समझ लो इहनूं पचिया कोई नहीं, हजम नहीं। जे को खावे जे को बुंचे तिसका होए उदारो, हजम भी करे। भोजन दी बुरकी पहले मुंह दे चाहुंदी है, स्वाद आ जाता है, पर ये अजे खून नहीं बने, अजे मांस नहीं बने, अजे शरीर दी शक्ति भी नहीं बनी, सिर्फ रस आया। ये जब अंदर जाएगी पचेगी उदों खून बनेगी, कुछ दिनों बाद एकदम नहीं बनती, एकदम रस आ जाता है, एकदम खून नहीं बनता। रस ते उसे वक्त आ गया, भुख भी मिट जाती है, खून उस वक्त नहीं बनता, समा लगता है, वक्त लगता है। हुण मैं अर्ज करा, रस वाहिगुरु आखदिया भी उस वक्त आ सकता है, उस वक्त आ सकता है। मैं अक्सर अर्ज करना होना, जमीन देते यात्रा तय होंदी है पैरां नाल, ते अंदाजा लग जांदा इतने घंटियां च पहुंच जावांगे, इतने दिनां च पहुंच जावांगे। परमात्मा तक यात्रा तय होंदी है जबान दे जपण नाल, कि किन्ने घंटे किन्ने महीनिया च यात्रा पूरी होवेगी, एक सैकंड, एक सैकंड, सिर्फ एको ही सैकंड लगता है। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे, निमक एक सैकंड, एक सैकंड, एक चित जाए एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो, एक छिन एक सैकंड। यात्रा ते पूरी हो सकती एक सैकंड दे च, लग जाते ने कई जन्म, जिंदगियां लग जांदियां। कारण बार जे हथा ने भोजन बनाया है ते मुंह ने खादा भी है, पर अक्सर भजन जबान कर दी ते है, जपते कर देने, भोजन ते बना लेंदे ने, छक देने। इस वास्ते सतगुरु ने कह दिता, जे को खावे जे को बुनचे। कल दे लफ्ज मैं दोहरा दया, रोटी कमानी रोटी पकानी औखी है, खानी सौखी है। पर मैं अर्ज करा, भजन दी दुनिया दे च अगर इनू अध्यात्मक खुराक बना ली है, ते ए पकानी कमानी ते सौखी है, खानी औखी। खाना की है, जे को खावे जे को बुनचे। खाना की है, गावी है सुनी है, सुनना, सुन के भुख मिटेगी। जिवें भोजन दी बुरकी अंदर गई, भुख बाहर निकल गई।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Radio Station 1550 AM Gurbani Segment tuhade tak. ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500

फरिश्ते की थी हद हो गई। ए मंदर ऐसा निगाह चाया हर तरह दा अनर्थ इथे करो क्यों जिंदगी है बोल दे जीवन है डिठे सबे थाओ नहीं तुद जेवया बद्धो पुरख विदाते तां तू सोया अंदाजन बारह महीने च दास एक महीना पंजी दिन हर साल उत्थे कथा कर दे और चाली साल तो मेरा नागा नहीं पिया कदी। मेरा अपना भी अनुभव है मैं सारी दुनिया च कथा कीती है उत्थे कथा करनी मेरे को बंदगी हो जाती है बाकी जगह ते एवें किरत हो जाती है समा पास करना हो जाता उत्थे बंदगी हो जाती है और मेरा अपना अनुभव मंदिर बोलता है चौबी घंटे बोलता उत्थे बड़ी जिंदगी है उत्थों दी वाइब्रेशन उत्थों दी लहरां उत्थे दा जीवन दिल्ली दियां संगतां नूं मैं कहा जे थानू सीसगंज रस ज्यादा आंदा इत्थे जिंदगी है इत्थे किसे ने अपना ओ खून डोलिया जो अमृत से इत्थे ओ आत्मा कई दिन बैठी रही जो चवे घंटे परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी सी फिर लगातार इत्थे चौबी घंटे कथा कीर्तन ते पाठ ते जप तो जरूर रस आवेगा जेड़े कुछ थोड़े जिहा इस मिजाज दे बंदे ने उन्होंने ज्यादा रस आएगा मैं उन्होंने कहा कीर्तनिया के कीर्तन का रस ना समझ लेना उन्होंने कंठ का उन्होंने कला दे नहीं एक कथा व्याख्या दलीलों का रस ना समझ लेना यह गुरु तेग बहादुर साहब जी की बरकत है इतों दिया मेहर इतों दिया लहर ने यह अस्थान भेद है यह जगह दस है इस वास्ते कहा गया जिमें जोड़े असी बहर ला के आते हाँ कोई दुनियावी गल उत्थे नहीं करनी जिस जगह ते बैठ के जप करना है तप करना है बाणी पढ़नी है कीर्तन करना है हर घर दे जिवें किचन आउंदा है रसोई आउंदी है भोजन बनांदे हैं शरीर लई हर घर दे दो फुट जगह ते कम से कम इतनी होवे चार फुट जिथे बैठ के चौकड़ा मार के वाहेगुरु मनुख जप सके वह जगह चार्ज हो जाएगी उस जगह दे बरकत पै जाएगी उस जगह ते दुष्ट भी बैठेगा उहदे मूंह आराम निकल जाएगा वाहेगुरु निकल जाएगा। इस तरह तुसी करके जो है देखना बहुत सारा समा मैं थोड़ा लै गया धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन रहमत करन जो कुछ आपने सरवण कीता थोड़े हिरदे च वसे जो मैं थानू सुनाया मेरे हिरदे च वसे थोड़ा सुनया होया कबूल होवे मेरा सुनाया होया सिर्फ एक मिनट मैं लैंदा ये जप भावें मेरा गला हुण थक गया है पर मैं पांच दफा कहना है मैं पहले कहना है तुसी बाद च इस तरीके नाल रोज़ घट तो घट 15 मिनट करना है अगों गुरु जितना करा ले वो फिर गुरु की मर्जी पर कम से कम 15 मिनट का इरादा कर लो तो मेरा अपना अनुभव है रोटी खांदे लगदे तो 15 मिनट ने सारा दिन तृप्ति बनी रहिंदी ये 15 मिनट का जब थानू 24 घंटे मस्ती च रखेगा सुरूर दे च रखेगा कल कलेश तो बचावेगा चिंतावां तो बचावेगा फिजूल दियां ठोकरां तो बचावेगा मन दी भटकण तो बचावेगा तो सिर्फ 5 दफा मैं कहना क्योंकि गला मेरा खुशको चलिया मैं पहले उच्चारण करांगा बाद दे तुसी ते मैं अर्ज कीती जिवें घड़ियाल दी आवाज़ है ना तुणाकार इस तरह करना

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सौगात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का।